थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जीव पेश पाखेना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्स सौ पी खुद दिलाथो त्रयोदशी नागढुङ्गा सिस्ने खुसी सुरुङ मार्ग याथौ औपचारिक रूपमा उलिज्या जितेङ्गुदु पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल जापानी राजदूत मायादा तोरु जापान अन्तर्राष्ट्रिय सोक निक जाइका या नायो नापत

त प्रहरी केकुगु गोली लाना छमुमनु सिधुङका आकर्फी यागुदु सुनसरिया प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेया उज कथ थौ सुते नेता इलनिसे जुलुस प्रदर्शन सभा बैठक व धरना थे तिथि कथ मुनेगु ज्या मया त इना याना तगुदु कर्फ्यु हरिनगर बजार पुटा बजार कप्तानगंज बजा कुस्की बजा वो देवानगंज बजा कर्फ्यू तया तो गुदु निग बहनी निगु पछि दोथी तसक लपु जुगली प्रहरी गोली केका नियन्त्रण क्यागु झोले देवानगंज गाउँपालिका तिन कप्तानगंज या नि पेदया ओम प्रकाश मेहता सिगुख प्रहरी गोली लाना च्याम प्रदर्शनकारी खापा जुगुदु ओपी मध्ये गुलीखे प्रदर्शकानी या अवस्था त चोगु नाप धागुदु शिक्षालिसे खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संघका अन्तर्गत एमबिएस नापाङ्गो सत्र या परीक्षा या नेसपो सार्न यागु घटना स्वापिन्त कानुनी कारवाही यागु धैदिगुदु मन्त्रालय सञ्चार कमी लिसे खलना दिसे मन्त्री पोखरेल उगु घटना स्वापी निमेषित नेपाल प्रहरी नियन्त्रणकै अनुसन्धान ह्याकुगु जानकारी व्यादिल वेकय कथ नेसपो सार्जिङ जुगु जानकारी वे व गृह मन्त्रालय व नेपाल प्रहरीसे समन्वय याना निगरानी त ब्याकुगु ख नेसपो साजिज्ञागु दोप्ने नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी निमिसित जुना थप अनुसन्धान याना चुङदु थोए साउन 8 गते सञ्चालन जुगु एमबिएस नापाङ्गो सत्र या अर्गनाइजेसनल बिहेभियर विषय या परीक्षा यागु छु यी लिपाहे नेसपो सामाजिक सञ्जाले साजिङ जुगु ख कैलालिया धनगढी अनुसन्धान चुनादीमा डाक्टर गोविन्द केसी पच्चिलिसे नेपाल सरकार प्रतिनिधि वार्ता न्याना चुङदु मिगनिसे न्यागु सल थौन न्यायगु धागुदु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर जेपी अग्रवाल स्वास्थ्यलिसे खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय सचिव डाक्टर विकास देवकोटा व शिक्षालिसे खेलकुद मन्त्रालय सचिव चुडामणि पौडेलिसे पुचल वार्ता याना चुनादीगु ख डाक्टर केसी या त वास याके त यातगु सेती प्रादेशिक अस्पताल हे वेकय प्रतिनिधि डाक्टर अमृत जेसी व पवन थापालिसे वार्ता जुयाचुङ्गु शिक्षा सबै सचिव पौडेल जानकारी व्यादिको ख नापाङ्गु चरेने डाक्टर केसिया प्रतिनिधिसे सल याना समत्याकु त जुयाचुङ्गु व उखी जुइगु निष्कर्ष कथन डाक्टर केसीलिसे थप वार्ता जुइगु वेक्ल खनादिल डाक्टर केसी थिथि न्यागु माग्दया वङ्गु बिहानीसे अनुसन्ध चुना दिगु ख स्वास्थ्य पङ्ग खने दुई थुङ्का मिग निसे सेती प्रादेशिक अस्पतालले सघन उपचार कक्ष तया वेकय उपचार जुयाचुङ्गु दु डाक्टर केसी गेटा चुङ्गु सहित दोस्रो चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लिसे चिकित्सा शिक्षा आयोग स्वार्थ तकि निगु याना जुगु नियम अख या नियुक्ति बदरयाना एन या विवादित प्रावधान याग्न संशोधन चिकित्सा शिक्षा आयोग पाखे छात्रवृत्ति कटौती यागु व मापदण्ड लिसे पूर्वाधार मध्येका निजी कलेज सिट अपेकेको निर्णय वा प्रस्ताव त तथ्य खारेज तयादिको ख राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 कथ चिकित्सा शिक्षा त पुङ्ग गैर नाफामूलक देखेको कानुनी प्रावधान फयापको याक्न कान यागु या नाप्नाप नापा नापा सरकारले सिन्जुको लिखित सहमति त्यहीको पालना सुदूरपश्चिमले सीमावर्ती क्षेत्र नागरिक त स्वास्थ्य शिक्षा यातायात व लजगाय नीति जलखला दे पर निर्भर जिमाको बाध्यता नहकेको नाप नागरिक अधिकार व राष्ट्रिय सम्मान या रक्षा नीति माग नाप प्रभावलिसे सेवा प्राथमिकता तब्याकेको माग याना तगुदो अथे ओङ्गु भौदौ 2324 गते जुगु जघन्य हत्या आगजनी लुटपाट लिसे या घटना या त दोषी कारवाहीलिसे 2046 साल निसे आतंकीय उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ व पदाधिकारी पि पाखी जुगु भ्रष्टाचार नाप अपराध निष्पक्ष छानबिन याना दोषी या त कारवाही या मागु डाक्टर केसिया मागदु कर्णाली प्रदेश या प्रदेश प्रमुख यगराज जोशी नुम मुख्यमन्त्री या नीति इनाप यानादिको दु मुख्यमन्त्री यामलाल कोडेल राजीनामा बि या दिगुली मुख्यमन्त्री या पद पा दुगुख पिम दुज या प्रदेशसभा नेपाली काङ्ग्रेस या चिन्याम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या चिन्सोम सभामुख नाप नेकपा एमाले या झिम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा व मेम नाप छम छम दुज दु
नेकपा

दि रेडियो नेपाली आङथिरिङ लामा शेर्पा ने सेरिकेकी साङ्गुर सेन्डोनाङ लोपजुङ तेजिन सिर्मु लोनपो सस्मित पोखरेल कि सिर्मु सखुलियार गेजोप्ला लोपटातिओला सुङकी सिर्मु ग्याकेन जोकु टडिकी तुब्लाका गोजु सुङ्वे लोनपो पोखरेल कि जनकपुर दाम उपमहानगरपालिका कि ओडा आङ जिल्ला उतुप माध्यमिक लोपटाकी लोपटुक्तिवाला सिर्मु चालाक थियो गोनागिन तुगै सुङलप नगुइन लोनपो पोखरेल कि लोपटातिओला लोपजुङ तङक्यान सिर्मु सखुल्ला सङ्खाक्षिन पोसी गो सुङिन लोपटुक्तुई यर्गेकी तन्दोक्ला सिर्मु सङ्ख खक्षणपो उतुप तपकी सिर्मु पूर्वाधार यर्गे जोप्ला लोपटा तुई नासम तंगु सुङसुङ थिम डिक्थिम तेजिन सिथु कोर्की लोनपो सोभिता गौतम कि मिमाङ तुई रेवा नङसिन यर्गेकी तन्दोक्ला खक्षणपो उतुप थिम गिरुवाजोगो सुङवाए आरिङ सर्गोत्पति वतङ क्यान सुङलप नङिन मिमाङ तुई रेवा नङ नङसिन थिम जोमाथो पुतप कि छर्सी नङसिन लाका कितुब्ला कले चुङ्गु सुङसुङ लोनपो गौतम कि लाका कितुब्ला कले तोङ्गु थिम तिवाला सर्के गिरो जब सुङिन निजामती सेवाला लो सुमचु लाका क्याउतङ लोङपचु ङाङा लेपु तमिया तन्दा थाकचोत कितुब्रिमाला उतुप सुङसुङ दलेन तेजिन ग्याङसिङ लोनपो डाक्टर विक्रम तिमिल सिनाकी यर्बी तुसोला स्वतक तङ टोक्पा न्युङमो जब तेजिन रङजुङ कल्या टडिकी तन्दोक्ला सानेसुङ प्रदेश तङ सङ्घीय सुङकी सिग्रिकीगो खाक्षणपो उतुप सुङवाए लोनपो तिमिल सिनाकी ठोतेन लोपजुङ ग्याङसिङ तङ रङजुङ कल्याकी टडिकी कोरला आरिङ नुवाकोटकी तादी युलसोक्पी चिखेप सन्तामान तामाङदाङ क्यान टोङ्गु क्यानाङ्गुभिन लोनपो तिमिल सिनाकी तादी युलसोक्पी यर्गेकी नेताङ साने देशेन तहकी कले मिमाङ तुई गुनासो तङ रेवाकी कोरला ख्यान्तोकला नाङ्गुभिन लोनपो तिमिल सिनाकी तादी युलसोक्पा वडा आङ निला नेपाल टेलिकम कि टावर तेजी नेटवर्क ग्याछा जब्ला ङमुसिना ङमुलाका गोजुतुप्ला निर्देशन नङ्गु सेनवाए लोपजुङ तेजिन सिर्मु लोनपो सस्मित पोखरेल कि त्रिभुवन जमुलिङ लोपटा म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी एमबिबिएस परीक्षा कि टिवा पाङला ख्याप्टा कि तुप्तिवाला ठिम तङ्गुप सुङवाए डाङ सर्गोत्पति वताङ क्यान सुङ्लप नाङिन लोनपो पोखरेल कि ती लाकाला सक्सुको तुपमिरा निला जिम्ने एमबी कोर्सुङ मग्मी कि ङ्यामसिप कि लाका गोसु सुङसुङ गलुप साउन लाकी गते गेकी सेर्मु परीक्षा गोजुरुङ मे ट्यो त्यो वाट्सएपलाई सेयर क्याउ क्योनला कैलाली कि गोरागोडी टोङ्केर वडा आङ चुची कि लो सुङ्जु सुहासुम कि सन्दीप सिंह जिम्बुइन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो कि छोकपी सिंहला भक्तपुर कि मध्यपुर ठिमी टोङ्केर वडा आङ ताङबोने जिम्बु ताङ तन्दा कोर्सुङ मग्मी कि ङ्याम्सिप कि ओतु ब्युरो कि सुङसेपा एसएसपी अनुपम शमशेर जबरा कि ख्यान्तोक नाङ्गुभिन नागडुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ लाम आरिङ औपचारिक शिला तेम्रिलचुङवाए पूर्वाधार यार्गे लोनपो सुनिल लामसाल जाइका कि चिखेप तानाका आका हितो तङ एम्बी तोन्दोक्ला जापानकी सुङसाप मायादा तोरुकी पिर्मी शिला सुरुङ लाम तेम्रिल क्यानाङ्गुभिन ल्यारिमला जाइका कि चिखेप तानाका कि सुरुङ लाम डुपा कितुप सुरुप्ती एम्बु तङ जापानकी लोग्युकी लाका डुपा चुङ्गुप सुङिन सुरुङ लाम यार्गेकी तोन्दोक्ला लक्सेपी रोग्रम परियोजना सम्भ गोचु ख्यान्तोक नाङसुङ तिरिम्बाला जापानकी सुङसाप मायादा तोरु कि ओडिए रोग्राम एमबी लक्से तङ श्रमिक तुई हुर्थाग्ने सुरुङ लाम डुपा चुङ्गुप सुङसुङ तोङ नि तङ सै टुकताङ गेचु ग्या ग्या मिटर रिङबु नागडुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ लाम एमबी थेङ ताङबो कि सुरुङ लाम इन्दुप एनसिसी दिलाम जिङचोङ क्यासीमा ट्राफिक जाम युङमोडोप रेवा क्यानवाए यम्बु तङ ग्याकर सनसम्ला उङथोपु लाका मेलाकपातियो न्युङमो जोब्ला तङ लेन्तियो दुतुप्ला सशस्त्र कोर्सुङ मक्मी बल नेपालकी बोर्डर इन्टरेक्सन टिम लग्लेन क्यानवाए जापाकी काँकडबित्ता मोरङकी रानी पर्सागी बिरगन्ज तङ रूपन्देकी डण्डाला सशस्त्र कोर्सुङ मक्मीकी सयकी गोठितला मिरा चुप्जीकी सपा लग्लेन क्याउ सेनवाए तुग्राङ क्याने बाँकेकी जमुना कञ्चनपुरकी गड्डा चौकी तङ कैलालीकी गौरी फन्टालासँग सपा लग्लेन क्याउ सेनवाए दिपलारङ सशस्त्र कि आइजिपी नारायण दत्त पौडेल कि आरिङ रूपन्देही डण्डाला उतुप सनसम सुङक्योप गुल्माने छपातियो लग्लेन कितुप लाका गोजुतुप सुङसुङ सुनसरीकी देवानगञ्जला चुङ्गुप घटनाकी कोर्ला सेमदुक क्यानाङ्गिन खाद्य तेदिन स्वच्छता लोनपो निसा मेहताकी सिधे तङ सिग्रिल टडिकी तुप्ला तेरिला सुनाङवाए लोनपो मेहताकी घटनाला रक गलुप्तिओला कुदुत सु नाङ्गिन खाङबी मितिओला सेम्सु सुनाङवाए तुग्राङ क्याने लोनपो मेहताकी क्योन फोकुती ठोतेन गमुराङ ल्यामुडोसिसिने मोदन क्यानाङ्गिन खोङथुई मेन्जुकी तन्दोक्ला टुङ्गी खाङकी हुर्था क्याने लाका कि ओतुप सुङसुङ लोनपो मेहताकी कलेकी नेताङला तेन्तेन मिन्दुप लेन्तिओला इच्छेकी तुप म्याङ्गु तङ चिसोक नाङला सिधे टडिकी तुप्ला रोक्रमकी गोला तेरिला सुनाङवाए दिपारलारङ सुनसरी जोङकी प्रशासन ल्याखुङकी आरिङ टोप्ला छुजो दिने जुन दासा नासोकला कर्फ्यु आदेश खेबेल क्यानवाए ल्याखुङकी स्थानीय प्रशासन ऐनितोङ निसु गेकी दफा टुकी क नङसिन याम्बा लेन खेफेल माचुङ्वा सकी तोन्दोकला कर्फ्यु खेफेल क्याउ सेनवाए दिकोर्ला तन्दा सिंहदरबारला सोखा तेरिकी सक्दु देनोतु सेनवाए
काठमाडौँकी चन्द्रगिरी टङ्केर वडा आङ च्याङा तीन थाना लामला स्कुटर तङ मिनी ट्रक थुक्ने दापक्योकलाई सोर्ने स्कुटरलाई होतुप मिमिराङी नासागन वाय आरिङ टोपला सतुङ गल्ने कलङ्की छकलाई उङ्गिन होतुप स्कुटर तङ यहाँबा छोक्ने डोइङ होतुप मिनी ट्रक थुक्ने दापक्योकलाई स्वरूप हिन् दापक्योकलाई क्युन फङ्ने नासागलुप मि चन्द्रगिरी टङ्केर वडा आङ चिङ्गीकी हरियालीकी रो शिवचुकी दीपक नेपाल तङ चन्द्रगिरी टङ्केर वडा आङ चुप्जीकी लोङपचुङ्गा टुकी सुभद्र नेपाल नासागलु सेनवाय टोकपाला स्वर्ने म्यागदीकी बेनी टङ्केर वडा आङ सुम्की बकिमली चिनाखेतकी लोदिन्चुकी लालवीर सन्त्याल नासागन वाय दाङगम वाउ टोकपाला स्वर्ने खोङ नासागलुप जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङ म्यागदीकी इन्सपेक्टर सागर तिमिल सिनाकी ख्यान्तोक नगुभिन दुग्राङ क्याने दाउलागिरी सोक्पा वडा आङ दिन दारापानीकी हाडे बिरला टकपाला सोरु लोटुकचुरे सुम्की धनकुमारी थापाला सेनबुरङ सुङ्क्योप क्याउ इन्सपेक्टर तिमिल सिनाकी ख्यान्तोक नाङसुङ कैलालीकी कैलारी हिलसोक्पा ला रुल्की फेने जोन्दा मिराचिक नासागन वाय नासागलुपमी कैलालीकी कैलारी हिलसोक्पा वडा आङ्गकी लोङी सुगुकी हेमन्त चौधरी इन्दुप जोङकी कोर्सुङमकमी ल्याकुङ कैलालीकी सेतुभिन सिङ्खाला लाकाकी ओतुप्रिम्बाला रुल्की फेसिमा चौधरीला नुब्लाराङ सेती प्रादेशिक मेनखाङला केलु हिन्सिनाङ मेन्जुकी तुप्रिम्बाला नासागलुप जोङकी कोर्सुङमकमी ल्याकुङकी इन्सपेक्टर कैलाश सिंह विष्टकी ख्यान्तोक नाङगुभिन जल तेजिन मौसम विज्ञान विभागकी मकवानपुर जोङकी जुरेली बजार सखुल्ला तन्द छर्वागेकिन ओतुप्तपकी सखुल्ला सतोक तङ टोकपा उङथोपु सेनवाय विभागकी लेनतङने चाङबी गाडीगुरुला छुग्यान उङथोपु तपकी मिमाङतेवाला च्याकबुकी ओला सुइन तुक्राङ क्याने लमजुङकी गरेडुङ तङ सिप्की दासातेवाला छर्वा बङ्गीगेकिन ओतुप्तपकी तङ चाङबु टिकपेतेवाला छुग्यान ओतुप्तपकी तङ सतोक टोकपा उङथोपु तपकी विभागकी मितेवाला च्याकबुकी ओला सुवाय रेडियो नेपालने आरिङकी सेरिकेकी साङ्गिर डुसुङ थुचिछे।

सङ्गीत माया लापाकातिला लागेर बाबा हिँड्दा चुवाई भाइरल तला अथवा आता बेनान सेन कोइताम्ला बारी खाम्बा तला कि आता थेजा खाबा रेल ताम हिँड्दा तसरी चुवाई न्यानबारी थेन चुला भिडियो त चियाबारी तब खाल्ला बिसाम अवश्य खाप मलाई निर्देशक सूर्य लामा से चुवाईला भिडियोला निर्देशन थेन सम्पादन गुर्गिन पक्षरी लामन मेहनत लाभ ब्याङ्क बोला वाई ब्रिखेन कुमार च्याङबाला छिक्दा सङ्गीतकार निमा दोङसे लामन ज्याबा सङ्गीत युवालिसा तामाङ वाई सङ्गीतला थुम्ला लामन चर्चित काइमो जितु लोप्चन थेन काइपा आरके स्याङतनला वाई नचु रोडिसुको बोला वाई से विमनमोला डोन्बो सोसी खाजिम एमी ए सिनेबारी नाला मिरी मुबा मिक्ली ते सिनेबारी।

0: चु रेडियो नेपाल हिना तामाङ सानगिरी राङनी दाठेनमुला गाइन्दिरा थिङ नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ ग्यालाम लातिनी ठोङसेङ लाभामुला पूर्वाधार विकास ब्लोन सुनिल लम्साल जापान मोखिल रो नियोग जाइकाला चोहो तानाका अकी हिको ठेन नेपाली शिवबा जापान ला घ्लेबोन मायला तोरुसे सुरुङला ठोङसेङला शिवबा मुबा ओझा धुरी जायकाला चोहो तानाका से नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ घ्यालाम्दा नेपालला यातायातला विकासरी दोङराब ताबा मुला बिसे सुङबा मुला चुङाछा सरकार से विक्रम सम्बत 2082 चैत्र निचुई ढुला कुनो राजपत्ररी सूचना छिसी सुरुङ ग्यालाम ब्राबा मोटर कादेदा किनबा टाङ्गा राजपत्र अनुसार कार भ्यान पिकअप ट्रैक्टर माइक्रो बस तेन स्यान्दो याङबा मोटर कादेदा याम्बु खामा सिका डुचुई गाथेन याम्बु ग्याम फिर्क्याफ निमा सिका डुचुई टाङ्गा तोक लाबा मुला मिनी बस्दा ग्यार्जा गिक्से सिका निचुई गा मिनी ट्रकदा सिका ब्रेचुई बस ट्रक दा ग्यार्जा निस डुचुई थेन लाना सामान पुइबा ट्रक कादेदा याम्बु खामा ग्यार्जा डुथेन फिर्क्याप निमा ग्यार्जा निसे सिका घाँचुई टाङ्गा तोक लाबा मुला सूचना थिएन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिनासे भारखारी भाल थिएन ढुई काबारी थिएन विपद व्यवस्थापन डी स्थानीय प्रदेश थिएन संघीय सरकार से राङ राङला थुम ढाङ्री मुबा तोबा समन्वय थिएन सहकार्य तादोला बिसी सुङबा मुला संचार ब्लोन तिमिल सिनासे स्यार लुई संचार राङबा विपद व्यवस्थापनला ताम्री तिनी नुवाकोटला तादी गाउँपालिकाला चोहो सन्त मान तामाङ थिएन ब्लोन खाङ्री लेङमोला शिवबा मुबा ब्लोन तिमिल सिनासे तारी गाउँपालिकारी पूर्वाधार सोबारी तोबा योजना गोसी सरकारला थुमढाङ्री मुबा योजना सोबारी बङ लबाबिसी सुङबा मुला स्यार थेन क्लाङ ब्लोन सस्मित पोखरेलसे त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायला एमबीएस गिक्षा सत्रला झाँसला प्रश्न सार्वजनिक लाभा धोसिदा ठिम अनुसार कारवाही लातोला विशेष सुङबा मुला ब्लोन खाङ्री सानगिर बोन कादेथेन लेङमोला शिवान ब्लोन पोखरेलसे घटनारी पो किन्बा कादेदा चुङसी नेपाल प्रहरीसे च्याबा साइबा लाभान मुला विशेष सुङबा मुबा व्हाट्सअप ग्याम प्रश्न सार्वजनिक लाभा कैलालीला घोडा घोडी नगरपालिका चुई घिक धिम तासी धाते खोपोङ भक्तपुर शिवा सोमची दिङला सन्दीप सिङदा चुङबा मुला मियो अनुसन्धान ब्युरोला टोलीसे सिङदा भक्तपुरला मध्यपुर थिमी नगरपालिका ग्याम चुङबा हिन्ला चुसाउन भ्रेला कुनु किन्बा एमबीएस गिक्चा सत्रला अर्गनाइजेसन बिहेभियर विषयला झाँच तामा तिलाई मिनेट्रिन प्रश्न पत्र सामाजिक सञ्जाली सार्वजनिक ताबा मुबा थिम न्याय थिएन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतमसे मिनिसे माइबा अनुसार विकास लाभारी तोबा थिम संशोधन लातोला बिसी सुङबा मुला चितोन्डी सानगिर बोन कादेथेन तिनी लेङमो लासिबान ब्लोन गौतमसे मिनिसे माइबा अनुसार थिम सोबारी आखाममा योजना अनुसारला गे ताबारी आखाम बिसी सुङबा मुबा ब्लोन गौतमसे गेदा अप्ठ्यारो शोभा ठिम्दा योनान संशोधन लाभा सुङबान निजामती सेवारी सोम्ची दिङ सेवा थेन गाँचुई गाँ दिङ छोबा ताम प्रक्रियारी मुलाबिसी सुङबा मुला सार्वजनिक नीति थिएन प्रत्यायोजित विधायन समितिला चिसाङ्री सांसद कादेसे युल्ला अस्तित्व थिएन पहिचान्दा कोङबा सोबारी तथ्यरी आधारित दोङराब्री ब्योन पुस्ताला छोरगान लेन लातोला बिसी सुङबा मुला समितिला तिनी ला सिंह दरबारी चिबा चिसाङ्री सांसद कादेसे आधुनिकीकरणला मिन्री दोङरा पुइबा नेपालला जाम्बुलिङ सम्पदा सूचीरी थान्बा घ्ला कादेला मौलिकतादा पोबा गे योनान कादोला बिसी सुङबा मुबा सुनसरीला देवनगंज री ताबा घटनारी लुइथेन खाद्य स्वच्छता ब्लोन निशा मेहतासे आच्याबा मानबान शान्ति समयमता थेन युलबाङ ब्रेलबा थानबारी मोकोन्दा मोइजेन लासियुबा मुला ब्लोन मेहतासे घटनारी शिवा कादेदा दुङ्युर प्रसाल शिवान घाइते कादेदा योनान ज्याबा तागाई बिसी सुङबा मुला चुनन घटनादा किन्सी सुनसरी जोङ प्रशासन गेजाङसे तिनी सियोला निस ह्यामा हेन्से लानन थुम्री कर्फ्यू आदेश जारी लाभमुला गेजाङसे ब्ली किल्ला तोगलासी होजा मुर नाङरी खालाई सेनोन वाल जुलुस प्रदर्शन चिसाङ थेन ब्राबारी आयङ बालासी कर्फ्यू आदेश जारी लाभमुला चुनन ताम्दा किन्सी नेपाल देवानगञ्ज घटनाला ताम्री दाते सुनसरीला जोङ प्रशासन गेजाङरी सर्वदलीय चिसाङ चिबनमुला स्यार्थेन क्लाङब्लोन सस्मित पोखरेलसे लोपखाङ घ्याम्नोन क्लाङबा थुम्दा बङ पिनबारी सरकारसे क्लाङबा लोप्पा मास्टर थानबारी माइबन मुलाबिसी सुङबा मुला ब्लोन पोखरेलसे जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाला ओडा नम्बर भ्लिरी मुबा सङ्कट मोचन देव शरण राम रती लोपखाङला लोपबोन कादेदा क्लाङबा से कादे पिन्सुबान चुताम सुङबा हिँला ब्लोन पोखरेलसे गाछा राङ लोपखाङ कादेरी धोमा लोबोन कादेसे क्लाङबा से कादे आरेबा ताम थानबासे जाजाकार तासाइनोन क्लाङबा से कादे लोबोन कादेदा पिनबा हिनला बिसी सुङबा मुबा लिछाला निचुई ब्ली घण्टारी ह्युल नाङरी ब्लिची गिक विपदला घटना ताबामुला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण से पाङबा अनुसार विपद ग्याम गोर सोम्ची निस जोङ प्रभावित ताबामुला विषम विपद से लाख निचुई सोम्चे तोङ निचुई सोम क्षति सोबामुला विपद ग्याम मेन्दो सोम मिनी सिबा मुला विषम मेन्दो चुईकु घाइते ताबामुला चुधुरी लाना घटना पुखरी से ठुवाबा मराङबा मुला जलथेन मौसम विज्ञान विभाग से मकवानपुर जोङला जुरेली बजार गामला थुम्री लानन नाम ताइबासे लाल बकैया गान्धीरी भाल खाबारी खामला बिसी पाङबा मुला विभाग से सूचना छिपान गान्धी गामला ब्लुम्बा घ्ला कादेरी चिबा मिनी कादेदा नाङ्गार स्योधोना सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा मुला चुराङलासिन लमजुङला घरे डुङथेन चु गामला थुम्री चिबा मिनीदान सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा मुला जाजा जाजा स्योङरिन भाल खाबारी खाम्बा ताबासे सजग ताबारी विभागसे मोइजेन लाबाहिनला याम्बुला चन्द्रगिरी नगरपालिका चुइङा तीन थाना सडक ग्यालाम्री स्कुटर थिएन मिनी ट्रक ठोकमा स्कुटर सेङ्बा थिएन स्कुटर री क्रेबा मेन्दो नि मिनी सिबा मुला तिनी स्योरी सतुङ्गल ग्याम कलङ्की क्यार खाबन लाभा स्कुटर थिएन मिनी ट्रक ठोकमा होजा दुर्घटना ताबा हिँला दुर्घटना री घाइते ताबा स्कुटर सेङ्बा चन्द्रगिरी नगरपालिका चुइनी हरि यालीला ब्लिचुई धिङला दीपक नेपालीला मन लवन लामा सिबा मुला विषाम स्कुटरला लिछा चिबा चन्द्रगिरी नगरपालिका चुइभ्लिला गाँचुई डु दिङला सुभद्रा कुमारी नेपाल लानोन तिनी छ्योरिन मन लामन लामा सिबा मुबा बिसी प्रहरी से पाङबा मुला बैतडिरी छे खानबा धुरी युङबासे टासी मेन्दोगिक झामेकोला घटना ताबा घ्लारिन सिबा मुला बैतडीला दशरथ चन्द नगरपालिका ओडा नम्बर गिक कलौन धिम ताबा निचुई नि दिङला अस्मिता भट्टला छे खानबा धुरी तोर ग्याम खाबा युङबासे टासी सिबा हिनला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ बैतडी से पाङबा मुला कैलालीला कैलारी गाउँपालिकारी पुखरी से ठुवामा मेन्दोगिक भ्योन सिबा मुला जोङ प्रहरी घेजाङ कैलाली से पाङबा अनुसार तिलमा मुना कैलाली गाउँपालिका गा जब द हवा दिम तबा निचुईको दिङला हेमन्त चौधरी दा राङलान बुरी गे लबा धुरी पुखरी से ठुवाबा मुबा पुखरी से ठुवाबा लिछा चौधरी दा सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीरी मन लवन लामा सिबा हिनला बिसी जोङ प्रहरी घेजाङ ला गे तेन्बा सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्टसे सुङबा मुला ढुई ग्याम म्यागदिला बेनी नगरपालिका सोम भक्की मली चिना खेत ला निश्चुई धिङला लाल वीर छत्याल सिबा मुला तिलमा मुना ताइबा ढुइसे दिम नाङमा मेर्सी चिबा धुरी छन्त्याल सिबा हिनला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ म्यागदिला प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल सिनासे सुङबा मुला चुराङलासिन धौलागिरी गाउँपालिका निस धरा पानीरी हाडे भिरी ढुइसे नाङबा डुचुई सोमदिङला धनकुमारी थापाला सोमोन उद्धार लाबा मुला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला स्यान्सिबान मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला
1: धेरै वर्षा भइरहेको बेला पहिरो जान सक्ने भिरालो ठाउँमा नबस्नुहोस्। आफ्नो घर वरिपरिको वातावरण हेर्नुहोस्। सुरक्षित रहन मौसम सम्बन्धी सूचना जानकारी नियमित लिने गर्नुहोस्।
2: समयमै सावधानी अपनाई हानि नोक्सानी हुनबाट जोगिनुहोस्। बाढी पहिरोबाट बचौँ, सुरक्षित नेपाल बनाऊ।
1: रेडियो नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
4: नेपालको समावेशी आवाज।
5: हामी रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ। अब हामी यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ करिब 5:45 बजेसम्म विभिन्न कलाकारहरूका स्वरमा रहेका लोकदोहोरी गीतहरू। पहिलो गीत सुनाउँछौँ, गोविन्द पुन मगर र देवी घरतीको स्वर, गोविन्द पुन मगर र धनबहादुर शिरीष मगरको शब्द सङ्कलनमा।

ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमै समाचार सुनल जाय। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री सविता गौतम जनताक चाहना अनुरूप विकासक लेल आवश्यक कानून संशोधन कयल जेबाक बात बतौलनि अछि। स्थानीय पत्रकार सङ्ग आइ बातचीत करैत ओ जनताक अपेक्षानुसार कानून बनायब नहि सकला पर योजना अनुसारक काज करबामे कठिनाइ हेबाक बात बतौलनि। ओ आर्थिक वर्ष 2083-84 के कानून सुधार वर्षक रूपमे घोषणा कयल गेलाक कारणे 166 कानून बनाओल जेबाक बात बतौलनि। मन्त्री गौतम काम में बाधा पहुँचय वाला कानून के तत्काल संशोधन कयल जेबाक चर्चा करैत निजामती सेवा में 30 वर्ष सेवा आ 55 वर्ष उम्र रहत के बात प्रक्रिया में रहल बतौलनि। नारायणी अस्पताल में चिकित्सक ऊपर भेल आक्रमण में गंभीर घायल भेल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद राम के थप उपचारक लेल काठमांडू स्थित राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर आनल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ट्रामा सेंटर पहुँच कर घायल भेल डॉक्टर रामक स्वास्थ्य अवस्था संबंध में जानकारी लेबाक संगे उपचार में कोनो कमी नहीं होमय देबाक लेल चिकित्सक आ अस्पताल प्रशासन के निर्देशन देलनि अछि। डॉक्टर राम के विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराओल जेबाक भेलाक कारणे आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाओल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्री मेहता उपचार में संलग्न चिकित्सक संग छलफल करैत आवश्यक सब सहयोग करबाक लेल मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। एही बीच मंत्रालय नारायणी अस्पताल में भेल तोड़फोड़ तथा चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी ऊपर के आक्रमण प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भेल जनौलक अछि। मंत्रालय उपचारक क्रम में होबय वाला कोनो अप्रिय घटनाक छानबीन के लेल प्रचलित कानून व्यवस्था रहला कारणे कानून हाथ में लकर हिंसात्मक गतिविधि कोनो अवस्था में स्वीकार नहीं हेबाक स्पष्ट कयलक अछि। मंत्रालय स्थानीय प्रशासन के घटना में संलग्न दोषी के पहचान कर कानून अनुसार कार्यवाही आगू बढ़ेबाक लेल आग्रह कयलक अछि। संगे चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी के नियमित सेवा संचालन करबाक लेल अनुरोध मंत्री मेहता अस्पताल में सुरक्षित आ निर्भयपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करबाक लेल संबंधित सबक सँ आग्रह सेहो कयलनि। मंत्री मेहता स्वास्थ्यकर्मी ऊपर के हिंसा कोनो समाजक लेल स्वीकार नहि हेबाक उल्लेख करैत स्वास्थ्य संस्था में सुरक्षित काज करबाक वातावरण सुनिश्चित करब सरकारक प्राथमिक जिम्मेवारी रहल बतौलनि। एहन घटना नहि दोहरा देबाक लेल आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक कदम प्रभावकारी रूप में आगू बढ़ेबाक ओ प्रतिबद्धता जनौलनि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल शिक्षा क्षेत्र में संरचनागत सुधार आ गुणस्तरीय शिक्षण सिकाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस के आय निरीक्षण तथा कैंपस के प्राध्यापक संघ संघक छलफल में वो समयक मांग संगे कैंपस सब शिक्षा क्षेत्रक संरचनागत सुधारक संगे गुणस्तरीय शिक्षण सिकाई पर जोर देल जेबाक चाही कहलनि। पुरान कैंपस भेलाक कारणे बहुतो समस्या हैब स्वाभाविक भेल उल्लेख करैत मंत्री पोखरेल कैंपस समय अनुसार पठन पाठन में सुधार आनैत परीक्षाक क्रम में होमय वाला अमर्यादित गतिविधि रोकबाक लेल निर्देशन सेहो देलनि। कैंपस के भौतिक संरचनाक सुधारक लेल तत्काल लिख कर पठेबाक निर्देशन दैत ओ मंत्रालय सँ होबय वाला सहयोग तत्काल करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। कैंपस में बिलिंग प्रणाली के ऑनलाइन करबाक कैंपस भीतर सर सफाई में सुधार आनबाक आ कैंपस भीतर रहल पुस्तकालय में देखल गेल समस्या तत्काल समाधान करबाक सेहो निर्देशन देलनि। कैंपस प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर बसंत कुमार कर्ण कैंपसक अवस्था भऽ रहल सुधारक प्रयास आ योजना संबंध में मंत्री पोखरेल के अवगत करौलनि। एहि क्रम में मंत्री पोखरेल कैंपस में अध्ययनरत विद्यार्थी सब संग सेहो छलफल कयलनि। छलफल के क्रम में विद्यार्थी सब कैंपस में पेयजल शौचालय के समस्या रहल सर सफाई में सुधार नहीं भेल आ पुस्तकालयक अवस्था ठीक नहीं रहल शिकायत कयने छलथि। एहिसँ पहिने आइए मंत्री पोखरेल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित संकट मोचन देवशरण रामरति माविक विद्यार्थी सबके विभिन्न प्रकारक खेलकूद सामग्री सब वितरण कयने छलथि। मध्य प्रदेश प्रमुख सुरेंद्र लाल कर्ण मानव अधिकारक प्रभावकारी संरक्षण के लेल प्रदेश सरकार अलग मानव अधिकार संबंधी ऐन आनल जेबाक आवश्यकता बतौलनि अछि। अनौपचारिक सेवा केंद्र इंसेक सबल नेपाल आ मुक्ति नेपाल सहित संस्थाक संयुक्त आयोजन में जनकपुर धाम में आइ सँ शुरू भेल मध्य प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलनक उद्घाटन करैत ओ समतामूलक समाज निर्माणक लेल नागरिक समाज नागरिक अगुवा आ राज्य सब मिलकर आगू बढ़बाक बात बतौलनि। प्रदेश प्रमुख कर्ण विश्व प्रविधि में तीव्र
गति सँ आगू बढ़ि रहल अवस्थामे नेपाली समाजमे देखल गेल जातीय विभेद आ महिला उपरके हिंसाके घटनाके निरुत्साहित कयल जयबाक आजुक आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ प्रदेश सरकार मानव अधिकार संरक्षणके लेल ठोस कानूनी आधार तय कयल जयबाक कहैत सम्मेलनसँ सरकारके आवश्यक नीति तथा सुझाव प्राप्त हेबाक अपेक्षा व्यक्त कयलनि। मध्य प्रदेशक श्रम तथा यातायात मंत्री शारदा थापा हरेक नागरिक सुरक्षित आ सक्षम नहि हेबा धरि मानवाधिकारक अभियान जारी रहबाक बात बतौलनि। प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश विश्वकर्मा दलित उपरके विभेद, महिला हिंसा, हरवाह चरवाह, सुकुम्बासी समस्या सहित राज्य प्राथमिकताक संग सम्बोधन कयल जयबाक धारणा रखलनि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल नागरिकक अधिकारक रक्षा करब राज्यक दायित्व भेल उल्लेख कयलनि। सम्मेलनमे मध्य प्रदेशक 8 जिलाक मानवाधिकार कर्मीक सहभागिता रहल आयोजक जनौलक अछि। अनशनरत प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी आ सरकारी टोली बीच भेल वार्ता सँ 8 मुद्दाक सहमतिक मसौदा तैयार कयल गेल अछि। रवि दिन सहमति नहि भऽ सकल, आइ पुनः भेल वार्ता सँ दुनू पक्ष 8 मुद्दा सहमतिक मसौदा तैयार कयलक अछि। मसौदा अनुमोदनक लेल प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह आ शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल के पठाओल गेल अछि। वार्ता टोली सरकारक जवाब के प्रतीक्षा कऽ रहल। डॉक्टर केसीक सहयोगी एवं वार्ता टोलीक सदस्य डॉक्टर अमृत जयसी जानकारी देलनि। पछिला समय पर्यटक सभक आकर्षण के केंद्र बनत गेल धनसाधाम वनस्पति उद्यान भीतर निर्माण कयल गेल नक्षत्र वाटिका में नक्षत्र राशि आग्रह अनुसार के वृक्षारोपण शुरू भेल अछि। मध्य प्रदेश सरकारक 8 लाख टकाक लागत में आर्थिक वर्ष 2082-83 में निर्माण कयल गेल ई नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्र, 12 राशि आ 9 ग्रह के गाछ रोपाई करबाक लक्ष्य रहल। उद्यानक प्रमुख मोहम्मद ताहिर हुसैन जानकारी देलनि। नवनिर्मित नक्षत्र वाटिका में काल संघीय सरकारक कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी आ मध्य प्रदेश सरकारक वन तथा वातावरण मंत्री शंकर प्रसाद चौधरी राशि अनुसार गाछ रोपि के वृक्षारोपणक शुरुआत कयल गेल प्रमुख हुसैन बतौलनि। हुनका अनुसार एहि वाटिका में क्रमशः नक्षत्र राशि आग्रह अनुसार के गाछ रोपल जायत। विक्रम संवत 2056 साल में स्थापना भेल एहि उद्यान भीतर विभिन्न विषयगत वाटिका सब स्थापना कयल गेल प्रमुख हुसैन जानकारी देलनि। हुनका अनुसार उद्यान भीतर धार्मिक वाटिका, नक्षत्र वाटिका, जड़ी बूटी शैक्षिक वाटिका, जल उद्यान, धनुष वाटिका, जलीय वनस्पति उद्यान, फूल उद्यान, टैक्सोनोमिकल फैमिली वाटिका सहित संरचना निर्माण कयल गेल अछि। लगभग 120 हेक्टर क्षेत्रफल में फैलल वनस्पति उद्यान भीतर के प्रत्येक वाटिका उद्यान भीतर संबंधित विषयक वनस्पति तथा जड़ी बूटीक गाछ लगाओल गेल प्रमुख हुसैन बतौलनि। हुनका अनुसार एहि वनस्पति उद्यान में हाल 276 वनस्पति प्रजातिक संरक्षण कयल गेल अछि। एहि मे 74 गाछ, 48 बुटियान, 134 झारपात आ 20 लहरे प्रजातिक वनस्पति संरक्षण कयल गेल अछि। वनस्पति उद्यान में अध्ययन अवलोकन के लेल आबयवला विद्यार्थी तथा अध्येता सब के आवश्यक जानकारीक लेल सूचना केंद्र व्यवस्थापन संगे सुगंधित जड़ी बूटी वनस्पतिक तेल प्रतिशत निर्धारण करबाक लेल केमिस्ट्री लैब सेहो स्थापना कयल गेल प्रमुख हुसैन के कथन रहल अछि। वन तथा वातावरण मंत्रालय अंतर्गत संचालित ई वनस्पति उद्यान संरक्षण अनुसंधान आ वातावरणीय शिक्षाक उद्देश्य सँ स्थापना कयल गेलाक बावजूदो मध्य प्रदेशक संभावना युक्त पर्यटकीय गंतव्य के रूप में विकसित होइत गेल अछि। जनकपुर धाम सँ लगभग 18 किलोमीटर पूर्व में रहल धनसाधाम वनस्पति उद्यान पछिला किछु वर्ष सँ आंतरिक आ बाह्य पर्यटक सब अवाक्रम बढ़ल। वनस्पति उद्यानक कर्मचारी सुरेश भंडारी बतौलनि। सप्तरिक हनुमान नगर कंकाली नगर पालिका वार्ड नंबर 8 स्थित जोगिनी माई मंदिर में रवि दिनक रात भेल तोड़फोड़ के घटना के लिए स्थानीय वासी सब आक्रोशित बनल अछि। मंदिर भीतर रहल भगवान शंकर आ देवी पार्वतीक मूर्ति के माथ के काटि के फेंकल गेल अवस्था में मंदिर के संरचना में सेहो क्षति पहुंचाओल। स्थानीय एक युवा ओम शंकर यादव जानकारी देलनि। घटना पश्चात आई भिनसर सँ स्थानीय वासी आ युवा सब मंदिर परिसर में जमा भ दोषी ऊपर कड़ा कार्यवाहीक मांग करैत आक्रोश व्यक्त कऽ रहल छल। ओ सब एहन घटना नहि दोहराबा देबाक लेल प्रशासन सँ प्रभावकारी डेग उठाओल जेबाक मांग कयलनि अछि। मांग संबोधन नहि भेला पर बाजार बंद, चक्का जाम सहितक आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। एहि घटना संबंध में सप्तरिक प्रमुख जिलाधिकारी CTO श्याम कृष्ण थापा प्रारंभिक अनुसंधानक आधार पर तोड़फोड़ में संलग्न व्यक्ति मानसिक अवस्था असामान्य अर्थात अर्ध पागल भऽ सकबाक बतौलनि अछि। हुनका अनुसार दू दिन पहिने ओही व्यक्ति एहि प्रकारक तोड़फोड़ कयल आरोप नियंत्रण में लेल गेल
ओ बताने छलथि। हाल देशभर मानसूनी वायुक प्रभाव रहल अछि। मानसूनक न्यूनचापीय रेखा सरदार स्थान के आसपास रहल देखल गेल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल हिमाली पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बादल आ तराईक भूभाग में आंशिक बादल लागल अछि। कोसी आ बागमती प्रदेशक किछु स्थान तथा गंडकी प्रदेशक एक दू स्थान में मेघ गर्जन तथा ठनका सहित हल्का सँ मध्यम वर्षाक संभावना भऽ रहल अछि। आइ राति देशभर साधारणतया बादल लागत आ देशक हिमालय आ पहाड़ी भूभाग किछु स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित मध्यम वर्षाक संभावना आ हिमपातक संभावना रहल बताओल गेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार। समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमांडू और धादिंग को जोड़ने वाली नागढोंगा सिस्नेखोला सुरंग सड़क का संचालन शुरू। देश की पहली सड़क सुरंग के खुलने से सड़क परिवहन को मिली नई गति। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुनसरी में सर्वदलीय बैठक का निर्णय। दीवानगंज और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू। चिकित्सक पर हमले के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने नारायणी अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सेवाएं की बंद। और नाइजीरिया के नारीडोन में आज तड़के हुए आतंकवादी हमले में 31 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के पहले सड़क सुरंग मार्ग नागढोंगा सिस्नेखोला सुरंग का आज औपचारिक उद्घाटन किया गया। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल, जायका के अध्यक्ष तानाका अकिहिको और नेपाल के लिए जापान के राजदूत मायदा तोरू ने संयुक्त रूप से सुरंग का उद्घाटन किया। जायका अध्यक्ष तानाका ने इसे नेपाल के परिवहन विकास की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये परियोजना नेपाल जापान सहयोग के नए अध्याय का प्रतीक है। उन्होंने सुरंग निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए दोनों देशों के बीच नई तकनीकी सहयोग परियोजना शुरू होने की भी जानकारी दी। जापानी राजदूत मायदा तोरू ने कहा कि ये परियोजना दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी का उदाहरण है और इससे नेपाल में सुरंग निर्माण तथा संचालन की तकनीकी क्षमता और मजबूत होगी। 2688 मीटर लंबी इस सुरंग के संचालन से काठमांडू नौबिसे सड़क खंड पर यात्रा समय कम होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और सड़क यात्रा अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनने की उम्मीद है। सुनसरी जिला प्रशासन कार्यालय में आज आयोजित सर्वदलीय बैठक ने सभी से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव घिमरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में दीवानगंज ग्रामीण नगर पालिका 3 के कप्तानगंज में हुई घटना के बाद प्रभावित क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी पक्षों द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रभावी प्रयास करने का निर्णय लिया गया। ये जानकारी सहायक प्रमुख जिला अधिकारी पोषण लामिछाने ने दी। स्थानीय प्रशासन ने दीवानगंज, घुसकी, कप्तानगंज, भुटहा और हरिनगरा बाजार क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी लामिछाने ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और वहां जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। कप्तानगंज में बीती रात 2 समूहों के बीच विवाद के बाद हुई झड़प में गोली लगने से घायल 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बैठक में जिले के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सुरक्षा निकायों के प्रमुखों और अन्य संबंधित पक्षों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय ने बीती रात सुनसरी में हुई घटना को लेकर वहां के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव घिमरे सहित सुरक्षा निकायों के प्रमुखों को वापस बुला लिया है। घिमरे को गृह मंत्रालय में वापस बुलाकर उनके स्थान पर संखुआ सभा के CDO ईश्वरी प्रसाद अर्याल को भेजा गया है। सुनसरी के दीवानगंज में हुई हिंसा के बाद कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रमुख DIG विनोद घिमरे को प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमांडू बुला लिया गया है। उनके स्थान पर प्रहरी प्रधान कार्यालय से DIG शेखर खनाल को भेजने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी के प्रमुख SP केशव थेबे का तबादला कर उन्हें भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भेज दिया गया है। उनकी जगह वहीं के SP पुष्पराज मल्ल को सुनसरी का प्रभार सौंपा गया है। वहीं सशस्त्र प्रहरी बल के DSP नंद किशोर महतो को भी वापस बुलाकर उनके स्थान पर मदन नाथ को नियुक्त किया गया है। दीवानगंज 3 के कप्तानगंज में कल रात 2 समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। घटना की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने सह सचिव भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसे 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। वीरगंज के नारायणी अस्पताल में चिकित्सक पर हमले और तोड़फोड़ की घटना के विरोध में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी रही। स्वास्थ्य कर्मियों ने घंटाघर चौक पर प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की गारंटी की मांग की। नेपाल चिकित्सक संघ के आह्वान पर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी आंदोलन का समर्थन किया जिससे शहर के अधिकांश अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमले की गंभीर रूप से हमले में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर प्रमोद राम को बेहतर इलाज के लिए काठमांडू भेजने की तैयारी की जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देते हुए आंदोलनरत डॉक्टरों से तत्काल काम पर लौटने की अपील की है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् बाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। सूचना एवं संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा है कि वर्षा ऋतु में बाढ़, भूस्खलन नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय, प्रादेशिक और संघीय सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है। नुआकोट की तादी गांवपालिका की समस्याओं के संबंध में आज मंत्रालय में गांवपालिका अध्यक्ष संतमान तामांग के साथ हुई बैठक में मंत्री डॉ. तिमिल सिन्हा ने गांवपालिका के समग्र विकास कार्यों की स्थिति, स्थानीय निकायों द्वारा झेली जा रही समस्याओं, नागरिकों की शिकायतों और अपेक्षाओं की जानकारी ली। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम की आवश्यकता है। जनकपुर धाम स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कॉलेज परिसर का आज निरीक्षण करने तथा परिसर के प्राध्यापकों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुरूप कॉलेजों को शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लुम्बिनी क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना पैकेज बनाकर उसका व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने पर जोर दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विशेष योजना के साथ पर्यटन का प्रचार प्रसार आवश्यक है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स नाट्टा लुम्बिनी द्वारा बुटवल में आयोजित नेपाल भारत पर्यटन पत्रकार सम्मेलन में वक्ताओं ने आध्यात्मिक पर्यटन के विकास पर विशेष बल दिया। बुटवल उपमहानगर पालिका के प्रमुख खेलराज पांडे ने कहा कि यदि काली गंडकी मार्ग से मुक्तिनाथ जाने वाले लाखों भारतीय श्रद्धालुओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए तो धार्मिक पर्यटन को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक नीति एवं प्रत्यायोजित विधायन समिति की बैठक में सांसदों ने कहा कि राष्ट्र के अस्तित्व और पहचान को सुदृढ़ बनाने के लिए युवाओं में तथ्य आधारित इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। आज सिंह दरबार में आयोजित समिति की बैठक में सांसदों ने कहा कि आधुनिकीकरण के नाम पर नेपाल के विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक स्थलों के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन करने वाली गतिविधियों को तत्काल रोका जाना चाहिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय इतिहास विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि प्राचीन मठ मंदिरों एवं सांस्कृतिक धरोहरों के ऐतिहासिक महत्व के प्रति पर्याप्त जनजागरूकता का अभाव तथा अप्रमाणित ऐतिहासिक व्याख्याओं के कारण पुरातात्विक धरोहरें नष्ट होती रही हैं और इतिहास का विकृतीकरण बढ़ता जा रहा है। अछाम जिले के कमल बाजार मानसेन सड़क खंड में आज दोपहर कमल बाजार के निकट हुई ऑटो रिक्शा दुर्घटना में घायल 3 लोगों में से एक महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। हादसे में कमल बाजार नगरपालिका 5 निवासी बेला भंडारी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु जिला अस्पताल अछाम में उपचार के दौरान हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नाइजीरिया के नारिडोन में आज तड़के आतंकवादियों ने हमला कर 31 लोगों की हत्या कर दी और कई घरों और दुकानों में आग लगा दी। स्थानीय लोगों के अनुसार हमलावर आधी रात के करीब हथियारों से लैस होकर गांव में घुसे और घर घर जाकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। मृतकों में किसान, व्यवसायी और 8 बच्चे भी शामिल हैं। हमले में 3 दुकानों, 2 घरों और 2 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान सेना को सूचना दी गई थी लेकिन समय पर सहायता नहीं मिली। बताया गया कि इस समुदाय पर इस तरह का ये पहला बड़ा आतंकी हमला है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की सम्भावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमांडू और धादिंग को जोड़ने वाली नागढुंगा सिसनेखोला सुरंग सड़क का संचालन शुरू। देश की पहली सड़क सुरंग के खुलने से सड़क परिवहन को मिली नई गति। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुनसरी में सर्वदलीय बैठक का निर्णय। दीवानगंज और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू। चिकित्सक पर हमले के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने नारायणी अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सेवाएं की बंद। और नाइजीरिया के नारीडोन में आज तड़के हुए आतंकवादी हमले में 31 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
6: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
7: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
8: *1415# डायल गर्नुहोस्।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
9: झन्डु आयुर्वेद,
10: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झन्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
9: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
10: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
9: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
10: झन्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।